0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, दुनिया में हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार और मित्र। लेकिन सांसारिक रिश्तों का एक दस्तूर है, वे तब तक बने रहते हैं जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। जैसे ही कोई मतभेद होता है या स्वार्थ के आड़े कोई बात आती है, रिश्तों का वह रंग फीका पड़ने लगता है। लोग बदल जाते हैं, वफादारी बदल जाती है और दिल पर लगा वह पुराना रंग उतर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मित्र के बारे में सुना है जिससे एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुसीबत उस रिश्ते के रंग को फीका नहीं कर सकती? कबीर साहब आज हमें एक ऐसे ही अनूठे और शाश्वत दोस्त से मिलवाने आए हैं जिसका रंग कभी उतरता ही नहीं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम रहस्यमय सूत्र। एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे तो भी रंग न जाई। एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, एक जो दोस्त हम किया

श्रोताओं, कबीर साहब अपनी अंतरात्मा के आनंद को प्रकट करते हुए कहते हैं, एक जू दोस्त हम किया, मैंने इस संसार के झूठे प्रपंचों को छोड़कर उस एक अविनाशी परमात्मा को अपना दोस्त यानी अपना सच्चा मित्र बना लिया है। जिस गली लाल कबाई, और वह मित्र ऐसा है जिसके गले में हमेशा लाल कबाई यानी प्रेम और आनंद का सुंदर सुंदर लाल चोगा रहता है। वह खुद भी इसी प्रेम के रंग में सराबोर है, और जो उसके पास जाता है उसे भी इस रंग में रंग देता है। जब उस परमात्मा का रंग आत्मा पर चढ़ता है तो क्या होता है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, सब जग धोबी धोई, सब जग धोबी धोई मरे। यह जो पूरा संसार है एक धोबी की तरह है, जो लगातार ताने मार कर समाज की रूढ़ियों और निंदा के पत्थरों पर पटक कर मेरी इस भक्ति के रंग को धोने की मिटाने की कोशिश करके थक गया है। तो भी रंग न जाए, लेकिन उस सच्चे मालिक के प्रेम का रंग इतना पक्का है कि यह संसार रूपी धोबी कितनी ही कोशिश कर ले, मेरे आत्मा से वह लाल रंग कभी उतर ही नहीं सकता। वह स्थायी हो चुका है। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह दोहा सूफी मत के इश्क ए हकीकी और वेदांत के अनन्य अनुराग का अद्भुत संगम है। अध्यात्म में लाल रंग को महा आनंद, सुमिरन और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जब साधक की चेतना उस निराकार राम तत्व से एक हो जाती है तो उसके भीतर एक भीतरी रूपांतरण घटित होता है। संसार का स्वभाव है कि वह जागते हुए साधक की परीक्षा लेता है, उसकी निंदा करता है, उसे भटकाने की कोशिश करता है। यही सब जग धोबी का अर्थ है। कबीर समझा रहे हैं कि जो भक्ति कच्ची करता है वह सामाजिक दबाव में टूट जाता है, लेकिन जहाँ संपूर्ण समर्पण है वहाँ आत्मा पर प्रभु प्रेम का ऐसा मजिठिया अर्थात पक्का रंग चढ़ जाता है जिसे काल भी नहीं मिटा सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से पूछिए कि हमारे जीवन का रंग इतना कच्चा क्यों है? क्यों किसी की छोटी सी कड़वी बात हमें उदास कर देती है? क्यों परिस्थितियों के बदलते ही हमारी भीतरी शांति गायब हो जाती है? क्योंकि हमने अपने रिश्ते और अपनी दोस्ती इस नश्वर संसार से लगा रखी हैं। आज कोशिश कीजिए उस लाल कबाई वाले सच्चे मित्र से हाथ मिलाने की। अपने भीतर उस राम नाम के पक्के रंग को घोलिए जो आपकी आत्मा को आनंद से सराबोर कर दें। जब भीतर वह सच्चा प्रेम जाग जाएगा तो बाहर का कोई भी धोबी, कोई भी निंदा या दुख आपको छू भी नहीं पाएगा, और आप परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए मस्त मलंग होकर जी सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंट्री

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं, क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हो, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए, मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं, हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए। मतलब हर चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है बेसिकली, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरी वन एल्स ऑल्सो बिकॉज इट वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए हमारे पास लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है, सो व्हाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच।
1: लाइक यू सेड, आई कैन डू सो मच फॉर हैप्पीनेस। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर हैप्पीनेस, यू हैव टू बी हैप्पी। सी, डूइंग और बीइंग, ये दो चीजें हैं। एक है बीइंग, मतलब हु आई एम, दैट बीइंग इनसाइड, एंड डूइंग इज व्हाट आई एम डूइंग आउटसाइड। तो एक है बीइंग हैप्पी एंड एक है डूइंग समथिंग फॉर गेटिंग हैप्पीनेस। तो एक है मैं हूँ खुश और दूसरा है मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया। सिंपल चीज़, जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे। यू नो, हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें, ये होगा
0: तो मैं खुश
1: तो खुश होंगी। यू नो, एक स्टूडेंट लाइफ से भी, इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट, या हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, स्कूलिंग खत्म हो
0: जाएगी, जब कॉलेज जाऊंगी ना तब आई नो।
1: सो वाइल दो स्कूल ईयर्स मैं ये कहती रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, विच मीन्स कि अभी
0: आई एम अनहैप्पी,
1: अभी आई एम नॉट हैप्पी, बट ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी। तो फिर चलो स्कूलिंग खत्म हुई, फिर हमारी एजुकेशन खत्म हुई, फिर हम प्रोफेशन में आ गए, फिर हमने सोचा व्हेन आई गेट अ पार्टनर ना, व्हेन आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप, एंड फिर वो देन आई विल बी हैप्पी, फिर वो सर्च स्टार्टेड फॉर दैट, फिर वो रिश्ता हुआ, देन ऐसे हमारे जब फैमिली हो जाएगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। तो एवरी टाइम वो हैप्पीनेस पोस्टपोन ही होती रही कि कब ये होगा।
0: और आई थिंक जब एक स्टेज आती है कि जब नहीं हो रहा होता और लगता है कि आगे तो और कुछ नहीं हो पाना, तो फिर तब पीछे देखना शुरू करते हैं, देन सेट कि वी लॉस्ट ऑन एवरीथिंग,
1: तब हम कहेंगे वो वाले जो दिन थे ना
0: वो अच्छे थे।
1: सो हियर आई एम इन द प्रेजेंट, लेकिन वेयर एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया। अगर मैं यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ कि जो हो गया दैट वॉज वेरी नाइस, दैट वॉज वेन आई वॉज हैप्पी, बट दैट टाइम आई डेंट फील दैट। क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वॉज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी। तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आने वाले पल में। इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, आई डोंट थिंक, बट इट इज लाइक दैट। एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स, आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें, वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज पर होती है। तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट, कुछ होगा तब खुशी मिलेगी, लोग कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस वॉज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड इन द प्रोसेस। मेरा एक एक पल बीतता गया, हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अगले पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा। कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड, लोगों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है, एक सेकंड अगर हम सोचे इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा, हाउ विल आई फील, कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी. जैसे ही
0: आई विल बी वेरी यू नो आई विल बी वेरी फियरफुल.
1: एक्जेक्टली, दैट्स द पॉइंट, दिस इज द क्रक्स. जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती.
0: क्योंकि फियर और हैप्पीनेस कांट बी,
1: फियर एंड हैप्पीनेस कैन नॉट बी टुगेदर. डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं. तो जैसे ही मेरी खुशी, क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीजों पर, लोगों पर, तो जितनी भी चीजों पर वो डिपेंडेंट है, मैं हर चीज के लिए डर में रहूंगी. लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा डर में रहूंगी कि ये ठीक है, ये मेरे से नाराज तो नहीं हुए, ये खुश है ना, ये संतुष्ट है ना, मैं इनके लिए क्या. फियर इनसिक्योरिटी, जहां डिपेंडेंसी है वहां इनसिक्योरिटी है. अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है, सारा दिन क्या है और इकट्ठे कर जाऊं, फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए, कहीं इन, अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं, तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा.
0: ऑफ कोर्स ये कि मेरा बॉस खुश रहे.
1: सी, इट्स ऑलवेज फियर. तो जहां फियर है वहां स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज वेस्ट. द ओनली रीजन कि इतना कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी की इक्वेशन अपने लाइफ में सेट कर ली है, इन चीजों पर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी मीन्स फियर. डिपेंडेंसी कैन नेवर बी स्टेबिलिटी. डिपेंडेंसी मीन्स फियर. जैसे जैसे आप एक एक चीज से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हटाते जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ हटा कर देखो. सपोज मैं एक दिन के लिए अपने आप को कहूँ मेरी खुशी इन पर डिपेंडेंट नहीं है, नाउ व्हेन आई कम इनटू इंटरेक्शन विद यू, हाउ विल आई बी,
0: यू विल बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू विल नॉट बी अफ्रेड एक्चुअली कि मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है.
1: एंड देन व्हाट विल दैट मेक मी,
0: you will be stable, you'll
1: I will be very natural. I will not be,
0: you'll not be artificial. Yes, you know,
1: see,
0: yes.
1: Because meri khushi aap pe dependent nahi hai, I can just be natural, I can be the way I am, mujhe aapko khush karna nahi
0: hai, you know, we mujhe dar nahi hai. Hate to be dependent, you know,
1: we hate to be dependent, but actually hum sara din dependent hi hain. परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, किन किन चीजों पर अपने आप को डिपेंडेंट करके रखा है, इतनी चीजों पर डिपेंडेंट होंगे तो खुशी तो फिर वो जीवन सारा डर में बीतता है. क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब ये नॉर्मल है किसी के साथ भी, अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि माई फिजिकल हेल्थ शुड बी ओके, तो हमेशा क्या बना रहे
0: कि मेरी ये कुछ होना चाहिए इसको. शिवानी, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी उस पर अगर मुझे दिख रही थी, बट वॉज इट ओनली डिपेंडेंसी और माई केयर वॉज नेचुरल. क्या मैं उसके प्रति, अगर मैं ऐसे हो जाऊँ कि फिर मुझे अपने आप को एक रहना है, तो मैं फिर उनके लिए जो मैं करती आ रही हूँ किसी के लिए भी, वो मैं नहीं करूँगी.
1: एग्जैक्टली. अब लेट्स लुक एट इट लाइक दिस, एक है जो मैं बाहर करती हूँ और एक है जो मैं करते हुए अंदर फील करती हूँ, जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. तो अब मैं बाहर आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, आप आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आपके लिए सब कुछ, मैं सब कुछ कर रही हूँ बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ. अगर मैं डर में हूँ तो कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है. अगर मैं इनसिक्योर हूँ कि मेरी हर छोटी बात पर यू नो आपको ये लगे, आप तो वो करते हुए आपको सब कुछ मैं कर दूंगी अच्छे तरह से, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होने वाली है, वॉट इज़ द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसी पर आज हमारे फंडामेंटल जो रिलेशनशिप्स इतनी मेहनत करते हुए भी क्यों उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने होने चाहिए, हम बाहर से शायद पहले से कई गुना ज़्यादा आज कर रहे हैं. यू नो, इवन इफ़ वी लुक एट पेरेंट्स एंड चाइल्ड, आई फील के वेन आई वॉज अ चाइल्ड तो इतना कुछ नहीं होता था, मतलब आराम से ही बड़े हो रहे थे, आ रहे हैं घर खा रहे. आज तो पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन करते हुए जो एनर्जी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो इनसे क्योंकि आज हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये बहुत डीप है, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उतना समय नहीं दे पाते. लेट्स से अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनको अंदर यू नो एक गिल्ट है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते, जब मैं गिल्ट में घर आती हूँ तो मैं और ज्यादा ओवर करती हूँ कि मैं क्या करूँ ताकि यू नो मैं आपको खुश कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे, अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आपकी गलतियों के लिए यू नो इन अ पेरेंट चाइल्ड मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं जितनी देर आपसे मिली हूँ ना आपकी हर बात मान लूँ, आपको जो चाहिए वो आपको दे दूँ, आपको किसी तरह मैं खुश कर दूँ ताकि एक तो मेरा गिल्ट भी खत्म कर दो, आई फील गुड, एंड दूसरा आप भी कंप्लेन ना करें. सो वो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गया फिर. और इसको करने से हुआ क्या कि मैं बच्चे का फायदा करने की बजाय
0: नुकसान
1: कर रही हूँ. बट इट ओनली ऑल हैपेंड, हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज जो कर रही हूँ वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रही हूँ. इंटेंशन इज वेरी प्योर, अगेन इंटेंशन इज वेरी राइट, लेकिन क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करके किया जा रहा है उसका रिजल्ट, तो वो क्या हो रहा है,
0: Somewhere we need to check our own emotions and own. Why we are doing
1: Absolutely. तो अब जैसे आपके लिए कुछ करने की बात आई, सपोज अब मुझे ये लगे कि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है, आई कैन क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, मुझे आपको खुश करना नहीं है खुश रहने के लिए खुद, तो दिस विल नॉट मेक मी इनडिफरेंट, दिस विल मेक मी वेरी स्ट्रॉन्ग पहले. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब यहाँ एनर्जी अच्छी होगी, मेरे अंदर डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, तो मेरे अंदर क्या, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस. लव कुछ करने में नहीं होता है, लव होता है फर्स्ट आई फील लव. एंड इफ आई एम फीलिंग लव, क्या मैं आपको अच्छी तरह से खाना बना के नहीं खिलाऊंगी जब आप आओगे? ये तो बहुत छोटी चीज है, ये करना तो बहुत इजी है किसी के लिए भी. कोई आ रहा है, आप 10 चीजें बना दो खाने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट की है? तो जब अंदर राइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो आउटर एक्शन है क्या वो कभी भी गलत हो सकता है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल.
0: तो इट मीन्स जब मैं इंडिफरेंट भी होती हूँ तो तब भी अंदर कोई हर्ट है.
1: हर्ट ही है ना, ऑफ कोर्स हर्ट है.
0: मतलब ये कि अगर मुझे ये फील करना है कि मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो फिर मैं कंप्लीटली यू नो
1: मैं इनडिफरेंट एक्चुअली बनती नहीं. जैसे ही मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी क्या है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो या तो मैं आपको बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करती हूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा हर्ट, आप मेरे से खुश नहीं हुए, तो मैं एकदम से रिएक्ट करके या तो विड्रॉ हो जाती हूँ. बोथ केसेस इट इज़ एन एक्सट्रीम केस. अगर मैं स्टेबल हूँ कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे खुश रहना है, अगर मैं खुश रहूँगी मेरी वाइब्रेशन राइट होगी, मेरी वाइब्रेशन अपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मुख से गलत वर्ड निकल नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे वचन, मेरे वर्ड्स का, मेरे एक्शंस का जो बीज है वो है यहाँ. अब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना.
0: अच्छा,
1: है
0: एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ, ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ, सपोज मेरा ही मूड ऑफ है.
1: Yes.
0: ठीक है, और मैं, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में, मुझे पता है आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इट्स नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशंस जो हैं वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली, इवन इफ
1: एब्सोल्युटली. लेकिन वाइब्रेशंस तो हमारा, सी वाइब्रेशंस हमारे यहाँ बॉक्स है, इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी क्रिएट, एंड दैट्स व्हाई वी सेड पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक स्टेप पर जो एनर्जी क्रिएट की, लेट्स से सुबह मॉर्निंग में एक डिस्टर्बेंस घर में हुई, वो जो एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो सिर्फ घर तक नहीं

0: विद मी टू वर्क. अब ऑफिस में भी फिर मेरा आज सारा दिन थोड़ा सा वैसे वाला बीतेगा. फिर व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क टू होम आई विल अगेन कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी. फिर उसी तरह व्यवहार. तो ये तो कैरी फॉरवर्ड तो हर जगह ही हो रहा है.
1: फिर मेरा रिलेशनशिप आपके साथ जब मैं घर आई या जो भी मेरे हस्बैंड है या वाइफ है उनके साथ, तो मेरा रिलेशनशिप में मुझे पर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. डिपेंडेंट आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस और लाइक यू नो, बट आई माई सेल्फ वॉज डिस्टर्ब विद समबडी
0: एल्स समथिंग एल्स. पर स्टेबिलिटी क्या है वो एक्सपीरियंस किया तो वो स्टेबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है. एक बार हमने स्टेबल रहना सीख लिया वो स्टेबिलिटी मींस कि हम डिपेंडेंट नहीं है. जब वो आपने सीख लिया तो वो फिर आप चाहे मेरे साथ हैं, इधर हैं, उधर हैं, किसी के भी साथ हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब डिपेंडेंट थी तो इस पर भी डिपेंडेंट है, इधर भी डिपेंडेंट है, उधर भी
1: डिपेंडेंट है. So it means it'll be with all, or it'll be with none.
0: Absolutely. You know? That is the crux. Either you will be happy, you will be always happy, and if you are disturbed, you're going to be more or less disturbed. Yes, ये हो सकता है कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह से बात की, तो मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी है. और वो डिपेंडेंसी फिर क्या क्रिएट करेगी, हमेशा वही एफर्ट कि ये मेरे साथ ठीक रहे, वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से नाराज है, कम से कम ये तो मेरे साथ ठीक रहे. इन द प्रोसेस आई विल सेंड यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. तो हम जो एफर्ट हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर स्टेबल होंगे तो यू मुझे इनडिफरेंट कर देगा, नहीं. हम समझते कि स्टेबिलिटी मीन्स इनसेंसिटिव, लेकिन स्टेबिलिटी विल मेक मी ऑल द मोर सेंसिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, हैप्पीनेस, लव और पीस, ये नेचुरल फ्लो करेगी. इसको जबरदस्ती क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी नेचुरल होगी जो फ्लो करेगी. एंड ये वो चीज़ है जो सबसे पहले सामने पहुँचती है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये वो सामने नहीं पहुँचेगी. एंड वंडरफुल बात ये होती कि इफ़ आई रियली क्रिएट लव for you, even if I say something जो थोड़ा सा harsh है, suppose मैं कह दूँ मुझे नहीं लगता कि जो आज आपने पहना है वो इतना अच्छा नहीं है, but I'm very clear कि intention क्या है, what do I feel for the opposite person, तो आपको वो बात hurt नहीं करेगी, क्योंकि वो hurt की energy के साथ गई नहीं है. क्यों नहीं गई है, क्योंकि यहाँ hurt नहीं है. लेकिन हम क्यों hurt बहुत जल्दी experience करते हैं, क्योंकि जो हमें बोलने वाला है
1: वो दे उस intention से रहा,
0: intention से शायद नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके पास energy वो वाली है ना. तो अगर मेरे अंदर वो energy इनसिक्योरिटी की है कि मेरे कुछ बोलने से इनको पता नहीं बुरा ना लगे, या अब वो इनसिक्योरिटी के साथ मैं बहुत ध्यान से भी कोशिश करूँ ना बोलने की आपको कि शायद जो आपने पहना, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर जाएगा. क्यों करेगा, क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी की, वो पेन की नेगेटिव एनर्जी. सो व्हेन यू आर स्टेबल आपको पुट ऑन नहीं करना पड़ता, आपको इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा कैसे बोलू, इनको बुरा तो नहीं लगेगा. कितनी सोच सारा दिन ये चलती है कि जो मैं बोल दूंगी ये बुरा तो नहीं लगेगा. क्यों बुरा लगेगा, बुरा लग नहीं सकता इफ इट हैज गॉन विद द राइट वाइब्रेशन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्क इज द ऑपोजिट पर्सन एनीवेज. लेकिन हम नेचुरल रहते हैं, इसको कहते हैं अपनी नेचर. नेचर मतलब वो जो हमारा स्वरूप है शांति का, खुशी का, उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करती है,
1: सहज होते जाएंगे.
0: एंड कर्म तो फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा. अच्छा, बट इट विल गो विद द राइट एनर्जी,
1: यू नो. सो अगेन चेकिंग इज on you know, कि आप कितने natural हैं.
0: और वो natural तब होते जाएंगे जब dependent नहीं है. तो एक एक अपनी dependency को check करें, ये भी एक बहुत subtle checking है. क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने लोगों पर और कितनी चीज़ों पर dependent हैं. आपने पहले कहा था freedom, जहाँ dependency है वहाँ freedom
1: नहीं है, बिल्कुल नहीं है. yes,
0: there is, it cannot be together. freedom और dependency कट्ठे नहीं हो सकती. अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ तो देन हाउ एम आई फ्री. फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के अफेक्ट से आई शुड बी फ्री.
1: होता यह है कि बहुत सी चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं. आप मेरे बॉस सपोज, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है मैं क्यों देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा काम, मेरा पूरा दिन भर आपके साथ रहना है, मेरी बहुत सी चीज़ें और बाकी जुड़ी हुई होती हैं. आप मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरी, मेरा अगर नहीं हुआ, अगर ये रिलेशनशिप नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और है. तो अगेन दैट इज़ वाई द इनसिक्योरिटी.
0: दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए, द राइट एनर्जी. तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है करना है.

0: लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूँ, स्टेबल हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल.
1: नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूँ मैं, अपनी बात कहने का जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की आपने बात की, वो हिम्मत नहीं रख पाता क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं.
0: पर जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब आप बिना रूड हुए या बिना हर्ट हुए भी अपनी बात सामने वाले को कह सकते. आज मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है, अंदर बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पाने के कारण अंदर ही अंदर रखा कर रहे हैं, खुश नहीं है, क्यों बोल नहीं पा रहे हैं. तो कम्युनिकेशन is really not there actually. Why? Because I don't have the courage to speak the truth. And why do I not have the courage to speak the truth? Because I'm scared. कि जैसे ही अगर मैंने कहा तो आपका disapproval तो नहीं मुझे मिलेगा, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे. ये insecurity मुझे अंदर ही अंदर घुटती जाती है. And then how can I ever be happy with so much of discomfort? That's why we realize कि ये सारा discomfort, ये सारा upheaval, ये सारी insecurity, ये बाहर किसी की वजह से नहीं है.
1: I have created it. And in fact, अगर आपने कहा कि बात भी तभी करो, even if you know that once you're stable inside, अगर हम इसी unstability में, इसी जो भी hurt, anger जो भी है, उसमें जाके बात करेंगे,
0: it won't work. Again, तब it will not work. क्योंकि suppose मेरे को कुछ problem है और मुझे कहनी है, लेकिन वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को स्टेबल रख के फिर कहनी है. लेकिन अगर वो इस भाव से कही जा रही है कि मुझे कंप्लेंट करना है आपके अगेंस्ट, या मुझे आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर फील कराना, या मुझे आपको क्रिटिसाइज करना, तो कितने भी अच्छे तरह से उस बात को रख दो, इट जस्ट वॉन्ट वर्क. वो एनर्जी तो साथ में जाने ही वाली है. वी नॉट एबल टू सी दैट एनर्जी इज फ्लोइंग विद द वर्ड्स. हमें लगता है सिर्फ वर्ड्स ट्रांसमिट होते हैं.
1: तो मैंने बहुत अच्छे तरह से कहा.
0: फिर हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था, पता नहीं क्यों नाराज हो गया, पता नहीं उनको क्यों वो बात बुरी लग गई है. वो जिस एंगल से देख रहे हैं दैट इज ओके, देयर जर्नी. बट अगर मेरी कोई कही हुई बात या कुछ कहा सामने वाले को पहुंची है एंड द पर्सन हैज क्रिएटेड हर्ट, कहीं ना कहीं आई हैव टू चेक माय एनर्जी. मैं उनको नहीं चेक कर सकती, उनको नहीं चेंज कर सकती, अपने आप को तो चेक कर सकती हूँ. तो जो मैं वर्ड्स भेजती हूँ सामने, जो मैं एक्शन सामने करती हूँ, इट ऑल्सो गोज विद अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू सी. एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कौन पहुँचता है.
1: एनर्जी पहुंच जाती
0: है, एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ड्स भेज रहे हैं, पहले ही सोच लिया पता नहीं कैसे दिख रहे हैं आज, क्या पहना हुआ है. वो फिर से बोला हाँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज देखने में. व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट. हम देन आई विल से मैंने तो बहुत अच्छी तरह से बात की है उनसे, पता नहीं उनको ही पता नहीं मेरी बात पसंद क्यों नहीं आई. एंड फिर हम कहते हैं मैं आपको नहीं समझ पाती, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस. कि मैं सोचती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हो, बीच में कन्वर्टर लगाया हुआ है, सोचो कुछ और, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ट्रांसमिट करो, और ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाले ने तो सिर्फ यही रिसीव किया और जो मैंने बोला वो तो बहुत अच्छा था, तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए. फिर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने उनसे अच्छी तरह से बात की फिर भी
1: तो
0: उनको अच्छा
1: तो
0: नहीं लगा. देन द फोकस अगेन गोज आउटसाइड. जस्ट हैव टू चेक दिस.
1: यस, यू नो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी लर्न टुडे, इज कि हमें जरूर चेक करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसे रिएक्ट क्यों कर, हम सिर्फ उनका रिएक्शन देखते हैं. वेरी ट्रू. और जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो अगर वो हैप्पी है तो ऑफ कोर्स मतलब कोई अपना है, तो हमारे किसी बोल से अगर कोई नाराज हुआ है या कोई दुख में है तो वी रियली नीड टू चेक कि हमने क्या किया था,
0: कौन सी एनर्जी भेजी थी साथ में.
1: यू नो समवेयर वी हैव टू सी, ये पेरेंट चाइल्ड में भी आ जाता है, हर रिलेशनशिप में इट कैन कम डेफिनेटली. तो आज जो बात हमारे सामने आई कि डिपेंडेंसी, मेरी अपनी हैप्पीनेस जो थी वो इसलिए बार बार ऊपर नीचे होती थी कि मैं अपने ही रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट था. और दूसरी बात ये कि जब मैंने अपनों को भी परेशान होते देखा मेरी ही बात से, वो भी कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट तो करती ही है.
0: That's why. And जैसे ही वो अफेक्ट करती है फिर आई सेंड द नेगेटिव. सपोज मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल हूँ, मैंने नहीं आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी, लेकिन आप हर्ट हो गए और आप रिएक्ट कर गए, वो रिएक्शन का मुझ पर प्रभाव तुरंत पड़ा. क्योंकि डिपेंडेंसी है, फिर मैंने इमिजिएटली आपको कौन सी एनर्जी भेजी, फिर वो एक्सचेंज ऑफ
1: पेन शुरू हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस है. तो इनफैक्ट इट्स सो फास्ट कि हमें रियलाइज भी नहीं होता. तो इट कैन ओनली हैपन विद अवेयरनेस. वी रियली नीड टू चेक. कोई मन में सवाल उठता है तो या तो आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. जैसे शिवानी, हर बार हम ये कहते हैं कि जो भी हम समझ रहे हैं वो अभी तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठकर उस पर विचार करते हैं या उसको सोचते हैं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठता जाता है.
0: जब साइलेंस में बैठते हैं हम अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और अगर रोज सुबह जब प्रोग्राम देख रहे हैं सभी, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि इसको सुनना नहीं है सिर्फ, यू नो, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो जस्ट डोंट लिसन टू इट, जैसे आपने सारा प्रोग्राम सुना, लेकिन अपने अंदर अपनी थॉट्स के साथ, अगर आपको ये थॉट्स ठीक लगी, द वे ऑफ थिंकिंग, तो उसको अपनी थिंकिंग के साथ रिलेट करना है, तब फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना. It will become simpler. Don't have to do too much effort with that. तो जैसे जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं साथ साथ उसको भी करते जाएं, और फिर रोज सवेरे उठकर कुछ मिनट्स अपने साथ बैठकर इसको फिर कर सकते हैं.
1: तो क्या हम अभी कुछ लम्हे जो है करें एक्सपीरियंस?
0: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने आप को देखें. आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढे, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब जगह ढूंढते ही रहे, इंतजार में कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे. आई नाउ अंडरस्टैंड आई एम अ हैप्पी बींग. खुशी मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना स्वभाव है. हैप्पीनेस इज व्हाट आई एम, हैप्पीनेस इज व्हाट आई क्रिएट. मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूं. एज आई गो आउट टुडे एंड टुमारो टू वर्क, लेट मी जस्ट टेक दिस थॉट विद मी. I am a happy being, going to work and meeting people. And jaise hi is thought ke saath jaate ki I am already happy, to khushi fir mangne ki nahi, lekin auron ko dene ki, auron ke saath share karne ki shakti ban jaate. Tomorrow, instead of looking for happiness, let's give happiness. Om Shanti.
1: Om Shanti. In fact, ये equation हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं. हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है. और आज इस thought के साथ कि मैं खुश हूँ, I'm a happy being, खुशी मेरी अपनी creation है, I can start giving. बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ और अभी करनी है, खुशी के कुछ और आस्पेक्ट समझने हैं, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं. ओम शांति.

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि चिदंबरम सुब्रमण्यम का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 30 जनवरी। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से निहारिका सखरदांडे और ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

गांधी जी का मानना था कि भारत गांव में बसता है और भारत के विकास के लिए गांव का विकास आवश्यक है, और इसके लिए वो ग्राम स्वराज, पंचायती राज, ग्रामोद्योग आदि को प्रमुख मानते थे। गांधी जी के इन विचारों को कार्य रूप में परिणत करने वाले महान देशभक्त थे मणिभाई भीमभाई देसाई। भारत के ग्रामोत्थान, स्वदेशी, खादी, ग्रामीण विकास और समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया। गांधी जी के विचारों को उन्होंने केवल सुना नहीं, बल्कि उन विचारों को धरातल पर भी उतार कर दिखाया। वो उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया और आजादी के बाद अत्यंत समर्पित भाव से राष्ट्र सेवा की। उन्होंने गांधी जी के सामने ही ये संकल्प लिया था कि वो भारत की निर्धन ग्रामीण जनता के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आजीवन कार्य करेंगे, और अपने इस संकल्प पर वो सदा अटल रहे। उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए ही उन्हें पद्मश्री तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से अलंकृत किया गया। मणिभाई देसाई का जन्म 27 अप्रैल सन 1920 को गुजरात के सूरत जिले के कोसमदा गांव में हुआ था। उनके पिता भीम भाई देसाई एक संपन्न किसान थे तथा आसपास के 10-15 गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन मणिभाई देसाई जब मात्र 1 साल के थे तभी उनका निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माताजी ने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभाली। मणिभाई एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो खेलकूद और स्काउट में भी अव्वल रहा करते थे। बचपन से ही उन्होंने एक ऐसे भारत को देखा था जहां अंग्रेजों का अन्याय, शोषण और अत्याचार था, और भारतवासियों को जगाती गांधी जी की आवाज थी। अंग्रेजी राज के विरुद्ध उनके आंदोलनों में जन सैलाब उमड़ पड़ता था। इस पूरे वातावरण का प्रभाव मणिभाई के बाल मन पर पड़ रहा था। गांधी जी के विचार उनके भीतर संस्कार बनकर बसने लगे और भारत माता की सेवा के प्रति वो संकल्पित होने लगे।

गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह आरंभ किया तब पूरा देश उनके साथ चल पड़ा था। उस समय मणिभाई देसाई की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, लेकिन इस बाल अवस्था में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया और उनके जीवन को जैसे एक दिशा ही मिल गई। मणिभाई के गांव के एक युवक नरोत्तम भाई पटेल भी गांधी जी के साथ अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा में शामिल हुए थे। जब वो गांव लौटे तो नमक स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन चुका था। वो चाहते थे कि ये नमक घर घर में वितरित किया जाए। उन्होंने इस कार्य के लिए मणिभाई देसाई को चुना। इस नमक के समक्ष ग्रामीण जनता जिस तरह से झुकती थी, ये देखकर मणिभाई अत्यंत गहराई से प्रभावित हुए। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने गांधी जी के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से जान और महसूस कर लिया था। इस तरह वो गांधी जी के सच्चे अनुयायी हो गए तथा गांधी मार्ग ही उनके जीवन का मार्ग बन गया। मणिभाई देसाई के बड़े भाई चाहते थे कि बड़े होकर मणिभाई एक इंजीनियर बने, इसीलिए उन्होंने कॉलेज में भौतिक शास्त्र तथा गणित विषय के साथ पढ़ाई शुरू की। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज के विरुद्ध अंतिम निर्णायक लड़ाई का शंखनाद हुआ। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा पूरे देश से आह्वान किया, करो या मरो। ऐसे समय में मणिभाई देसाई भी रुक नहीं पाए। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी और गांधी जी के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े। सन 1943 में मणिभाई देसाई गांधी जी के साथ जेल में थे, जहां उन्होंने गांधी जी के साथ ग्राम विकास की आवश्यकता पर बातचीत की। यही वो बिंदु था जहां से मणिभाई देसाई का जीवन अपने नियत भविष्य की ओर बढ़ चला। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें अब इंजीनियर नहीं बनना है, वो अब आजीवन गांव के विकास के लिए काम करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद पूर्ण संकल्पित मणिभाई देसाई गाड़ी पकड़कर गांधी जी के पास उनके आश्रम में आ गए। आश्रम में उनकी जो भेंट गांधी जी से हुई वो अत्यंत महत्वपूर्ण रही। गांधी जी के पास पहुंचकर जब मणिभाई देसाई ने गांधी जी के समक्ष अपना मंतव्य रखा तो गांधी जी ने जो कुछ कहा वो अत्यंत रोचक है। बापू ने उनसे कहा, तुम पहले गांव जाओ और अब तक जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उसे भुला कर जाना। गांधी जी का आदेश सुनकर मणिभाई देसाई आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गांधी जी से पूछा, बापू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप शिक्षा के विरुद्ध हैं? इस पर गांधी जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने अत्यंत स्नेह से कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात मैंने तुम्हारी शिक्षा के लिए नहीं कही। ये बात तो मैंने इसलिए कही है कि शिक्षा के साथ साथ कॉलेज और समाज भी एक साहबी रंग ढंग पढ़ा देता है, उससे पीछा छुड़ाना जरूरी है। मणिभाई देसाई समझ गए कि गांव में गांव की सहजता के साथ ही प्रवेश किया जा सकता है। इस सहजता के साथ ही स्वदेशी और स्वराज का संदेश गांव वालों को दिया जा सकता है।

मणिभाई देसाई ने न सिर्फ गांधी जी के विचारों को समझा बल्कि अपना पूरा जीवन ग्रामोद्योग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खादी के प्रचार प्रसार को एक आंदोलन का रूप दिया। उनका मानना था कि खादी सिर्फ वस्त्र नहीं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। घर घर चरखा चलने लगा। गांव में चरखे की आवाज सिर्फ सूत नहीं काटती थी, वो एक नए भारत का सपना बुनती थी। मणिभाई देसाई ने इसे एक संगठित आर्थिक गतिविधि बनाया जहां महिलाएं, गरीब, किसान, समाज का हर वर्ग अपने श्रम से आत्मसम्मान और रोजगार दोनों पाने लगा। सन 1946 में गांधीजी पुणे शहर के पास उरुली कंचन गांव में रहे। उस समय तक गांधीजी पश्चिमी चिकित्सा पद्धति से असंतुष्ट हो चुके थे और प्राकृतिक चिकित्सा का पता लगाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने उरुली में स्थापित प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम के प्रबंधन का काम मणिभाई देसाई को सौंपा। यहाँ की चिकित्सा पद्धति में शुद्ध आहार, उपवास, सूर्य स्नान, भाप से स्नान, मालिश तथा लाभकारी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था। इस आश्रम में काम करने के दौरान ही मणिभाई देसाई ने खेती और मवेशी प्रजनन के काम में रुचि लेना आरंभ किया और आगे चलकर उनका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सामने आया जब सन 1967 में उन्होंने भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने बापू के गो संरक्षण के सिद्धांत को कार्य रूप दिया। मणिभाई देसाई ने मवेशी प्रजनन तथा खेती की नवीन लाभकारी तकनीकों की जानकारी और धन जुटाने के लिए डेनमार्क, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और इजराइल जैसे देशों का दौरा भी किया। उन्होंने यूरोपीय गायों की अच्छी नस्ल के साथ भारतीय गायों की नस्लों का कृत्रिम गर्भाधान कर ऐसी नई नस्ल तैयार की जो अधिक दूध देने में सक्षम थी। इसके साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। BAIF के जरिए मणिभाई देसाई ने वो कर दिखाया जो देश में कम ही लोग कर पाए। ये कोई पशु विकास कार्यक्रम नहीं था बल्कि ये एक मानव विकास कार्यक्रम था। वो ग्रामीणों के हाथों में उन्नत तकनीक देना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण जन अपना उत्थान सुनिश्चित करें। आगे चलकर मणिभाई देसाई ने BAIF की गतिविधियों का दायरा बढ़ाते हुए इसमें पोषण, वनीकरण, बंजर भूमि विकास और जनजातीय विकास को भी शामिल किया। इस तरह मणिभाई देसाई के शोध और ग्रामीण विकास परियोजनाओं से प्राप्त लाभ अद्भुत रहे। चाहे बात ग्रामीण हस्तकला की हो, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की हो या कृषि आधारित उद्योग की, उन्होंने इन सारे विषयों को एक व्यापक आर्थिक दर्शन में बदल दिया। यही कारण है कि उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से अलंकृत किया गया। गांधीवादी मूल्यों और सामाजिक विकास के लिए जीते हुए उन्होंने 14 नवंबर सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस व्यक्तित्व की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस व्यक्तित्व की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, दुनिया में हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार और मित्र। लेकिन सांसारिक रिश्तों का एक दस्तूर है, वे तब तक बने रहते हैं जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। जैसे ही कोई मतभेद होता है या स्वार्थ के आड़े कोई बात आती है, रिश्तों का वह रंग फीका पड़ने लगता है। लोग बदल जाते हैं, वफादारी बदल जाती है और दिल पर लगा वह पुराना रंग उतर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मित्र के बारे में सुना है जिससे एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुसीबत उस रिश्ते के रंग को फीका नहीं कर सकती? कबीर साहब आज हमें एक ऐसे ही अनूठे और शाश्वत दोस्त से मिलवाने आए हैं जिसका रंग कभी उतरता ही नहीं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम रहस्यमय सूत्र। एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे तो भी रंग न जाई। एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, एक जु दोस्त हम किया

श्रोताओं, कबीर साहब अपनी अंतरात्मा के आनंद को प्रकट करते हुए कहते हैं, एक जो दोस्त हम किया, मैंने इस संसार के झूठे प्रपंचों को छोड़कर उस एक अविनाशी परमात्मा को अपना दोस्त यानी अपना सच्चा मित्र बना लिया है। जिस गली लाल कबाई, और वह मित्र ऐसा है जिसके गले में हमेशा लाल कबाई यानी प्रेम और आनंद का सुंदर सुंदर लाल चोगा रहता है। वह खुद भी इसी प्रेम के रंग में सराबोर है, और जो उसके पास जाता है उसे भी इस रंग में रंग देता है। जब उस परमात्मा का रंग आत्मा पर चढ़ता है तो क्या होता है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, सब जग धोबी धोई, सब जग धोबी धोई मरे। यह जो पूरा संसार है एक धोबी की तरह है, जो लगातार ताने मार कर समाज की रूढ़ियों और निंदा के पत्थरों पर पटक कर मेरी इस भक्ति के रंग को धोने की मिटाने की कोशिश करके थक गया है। तो भी रंग न जाए, लेकिन उस सच्चे मालिक के प्रेम का रंग इतना पक्का है कि यह संसार रूपी धोबी कितनी ही कोशिश कर ले, मेरे आत्मा से वह लाल रंग कभी उतर ही नहीं सकता। वह स्थायी हो चुका है। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह दोहा सूफी मत के इश्क ए हकीकी और वेदांत के अनन्य अनुराग का अद्भुत संगम है। अध्यात्म में लाल रंग को महाआनंद, सुमिरन और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जब साधक की चेतना उस निराकार राम तत्व से एक हो जाती है तो उसके भीतर एक भीतरी रूपांतरण घटित होता है। संसार का स्वभाव है कि वह जागते हुए साधक की परीक्षा लेता है, उसकी निंदा करता है, उसे भटकाने की कोशिश करता है। यही सब जग धोबी का अर्थ है। कबीर समझा रहे हैं कि जो भक्ति कच्ची करता है वह सामाजिक दबाव में टूट जाता है, लेकिन जहाँ संपूर्ण समर्पण है वहाँ आत्मा पर प्रभु प्रेम का ऐसा मजिठिया अर्थात पक्का रंग चढ़ जाता है जिसे काल भी नहीं मिटा सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से पूछिए कि हमारे जीवन का रंग इतना कच्चा क्यों है? क्यों किसी की छोटी सी कड़वी बात हमें उदास कर देती है? क्यों परिस्थितियों के बदलते ही हमारी भीतरी शांति गायब हो जाती है? क्योंकि हमने अपने रिश्ते और अपनी दोस्ती इस नश्वर संसार से लगा रखी हैं। आज कोशिश कीजिए उस लाल कबाई वाले सच्चे मित्र से हाथ मिलाने की। अपने भीतर उस राम नाम के पक्के रंग को घोलिए जो आपकी आत्मा को आनंद से सराबोर कर दें। जब भीतर वह सच्चा प्रेम जाग जाएगा तो बाहर का कोई भी धोबी, कोई भी निंदा या दुख आपको छू भी नहीं पाएगा, और आप परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए मस्त मलंग होकर जी सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटर

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं, क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हों, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए, मतलब हर चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है बेसिकली बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरीवन एल्स आल्सो बिकॉज इट वाज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए हमारे पास लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है सो वाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच।
1: Like you said, I can do so much for happiness. You don't have to do anything for happiness. You have to be happy. See, doing or being, ये दो चीजें हैं। एक है being, मतलब who I am, that being inside. And doing is what I'm doing outside. तो एक है being happy and एक है doing something for getting happiness. तो एक है मैं हूँ खुश और दूसरा है मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया। सिंपल चीज, जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे, यू नो, हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें, ये होगा
0: तो मैं खुश
1: तो खुश होंगी, यू नो, एक स्टूडेंट लाइफ से भी, इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट, या हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, स्कूलिंग खत्म हो जाएगी,
0: अर्निंग ना, व्हेन आई विल बी इंडिपेंडेंट, या मैं जब कॉलेज जाऊंगी ना तब आई विल नो।
1: सो वाइल दो स्कूल ईयर्स मैं ये कहती रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना देन आई विल बी हैप्पी। जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, विच मीन्स कि अभी
0: I'm unhappy.
1: Yeah. अभी आई एम नॉट हैप्पी, बट ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी। तो फिर चलो स्कूलिंग खत्म हुई, फिर हमारी एजुकेशन खत्म हुई, फिर हम प्रोफेशन में आ गए, फिर हमने सोचा व्हेन आई गेट अ पार्टनर ना, व्हेन आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड फिर वो देन आई विल बी हैप्पी, फिर वो सर्च स्टार्टेड फॉर दैट, फिर वो रिश्ता हुआ, देन आई से हमारे जब फैमिली हो जाएगी ना देन आई विल बी हैप्पी। तो एवरी टाइम वो हैप्पीनेस पोस्टपोन ही होती रही कि कब ये होगा।
0: और आई थिंक जब एक स्टेज आती है कि जब नहीं हो रहा होता और लगता है कि आगे तो और कुछ नहीं हो पाना, तो फिर तब पीछे देखना शुरू करते हैं, देन सेट कि वी लॉस्ट ऑन एवरीथिंग,
1: तब हम कहेंगे वो वाले जो दिन थे ना
0: वो अच्छे थे।
1: सो हियर आई एम इन द प्रेजेंट, लेकिन वेयर एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया। अगर मैं यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ कि जो हो गया दैट वॉज वेरी नाइस, दैट वॉज वेन आई वॉज हैप्पी, बट दैट टाइम आई डेंट फील दैट, क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वॉज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी। तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आने वाले पल में। इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, आई डोंट थिंक, बट इट इज लाइक दैट। एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स, आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज पर होती है। तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट, कुछ होगा तब खुशी मिलेगी, लोग कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस वॉज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड इन द प्रोसेस, मेरा एक एक पल बीतता गया हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अगले पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा। कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज पर डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंडेंट, लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है, एक सेकंड अगर हम सोचे इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा, हाउ विल आई फील, कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी. जैसे ही
0: आई विल बी वेरी यू नो आई विल बी वेरी फियरफुल.
1: एक्जेक्टली, दैट्स द पॉइंट, दिस इज द क्रक्स. जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती.
0: क्योंकि फियर और हैप्पीनेस कांट बी,
1: फियर एंड हैप्पीनेस कैन नॉट बी टुगेदर. डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं. तो जैसे ही मेरी खुशी, क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीजों पर, लोगों पर, तो जितनी भी चीजों पर वो डिपेंडेंट है, मैं हर चीज के लिए डर में रहूंगी. लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा डर में रहूंगी कि ये ठीक है, ये मेरे से नाराज तो नहीं हुए, ये खुश है ना, ये संतुष्ट है ना, मैं इनके लिए क्या. फियर इनसिक्योरिटी, जहां डिपेंडेंसी है वहां इनसिक्योरिटी है. अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है, सारा दिन क्या है और इकट्ठे कर जाऊं, फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए, कहीं इन, अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं, तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा.
0: Of course, ये कि मेरा बॉस खुश रहे, you know?
1: See, it's always fear. तो जहां फियर है वहां स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज वेस्ट. द ओनली रीजन कि इतना कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए हम खुश नहीं है, क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी की इक्वेशन अपने लाइफ में सेट कर ली है, इन चीजों पर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी मीन्स फियर. डिपेंडेंसी कैन नेवर बी स्टेबिलिटी. डिपेंडेंसी मीन्स फियर. जैसे जैसे आप एक एक चीज से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हटाते जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ हटा कर देखो. सपोज मैं एक दिन के लिए अपने आप को कहूँ मेरी खुशी इन पर डिपेंडेंट नहीं है, नाउ व्हेन आई कम इनटू इंटरेक्शन विद यू, हाउ विल आई बी,
0: यू विल बी अ स्ट्रांग पर्सन, यू विल नॉट बी अफ्रेड एक्चुअली कि मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है.
1: एंड देन व्हाट विल दैट मेक मी,
0: you will be stable, you
1: will be very natural. I will not be,
0: you will not be artificial. Yes,
1: yes,
0: you know,
1: see, yes. Because meri khushi aap pe dependent nahi hai, I can just be natural, I can be the way I am. Mujhe aapko khush karna nahi hai,
0: you know, we
1: mujhe
0: dar nahi hai. Hate to be dependent, you know,
1: we hate to be dependent, but actually hum sara din dependent hi hai. परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, किन किन चीजों पर अपने आप को डिपेंडेंट करके रखा है, इतनी चीजों पर डिपेंडेंट होंगे तो खुशी, तो फिर वो जीवन सारा डर में बीतता है. क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब ये नॉर्मल है किसी के साथ भी. अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि माई फिजिकल हेल्थ शुड बी ओके, तो हमेशा क्या बना रहे
0: कि मेरी ये कुछ होना चाहिए इसको. शिवानी, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी उस पर अगर मुझे दिख रही थी, बट वॉज इट ओनली डिपेंडेंसी और माई केयर वॉज नेचुरल. क्या मैं उसके प्रति, अगर मैं ऐसे हो जाऊँ कि फिर मुझे अपने आप को एक रहना है, तो मैं फिर उनके लिए जो मैं करती आ रही हूँ किसी के लिए भी, वो मैं नहीं करूँगी.
1: एग्जैक्टली. अब लेट्स लुक एट इट लाइक दिस, एक है जो मैं बाहर करती हूँ और एक है जो मैं करते हुए अंदर फील करती हूँ, जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. तो अब मैं बाहर आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, आप आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आपके लिए सब कुछ, मैं सब कुछ कर रही हूँ बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ. अगर मैं डर में हूँ तो कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है. अगर मैं इनसिक्योर हूँ कि मेरी हर छोटी बात पर यू नो आपको ये लगे, आप तो वो करते हुए आपको सब कुछ मैं कर दूंगी अच्छी तरह से, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होने वाली है. What is the energy of the interaction? ये बहुत important है. इसी पर आज हमारे fundamental जो relationships इतनी मेहनत करते हुए भी क्यों उतने strong नहीं हैं जितने होने चाहिए. हम बाहर से शायद पहले से कई गुना ज़्यादा आज कर रहे हैं. You know, even if we look at parents and child, I feel कि when I was a child तो इतना कुछ नहीं होता था, मतलब आराम से ही बड़े हो रहे थे, आ रहे हैं घर खा रहे. आज तो पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन करते हुए जो एनर्जी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो इनसे क्योंकि आज हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये बहुत डीप है. मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उतना समय नहीं दे पाते. लेट्स से अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, उनको अंदर यू नो एक गिल्ट है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते, जब मैं गिल्ट में घर आती हूँ तो मैं और ज्यादा ओवर करती हूँ कि मैं क्या करूँ ताकि यू नो मैं आपको खुश कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे, अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आपकी गलतियों के लिए यू नो इन अ पेरेंट चाइल्ड मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं जितनी देर आपसे मिली हूँ ना आपकी हर बात मान लूँ, आपको जो चाहिए वो आपको दे दूँ, आपको किसी तरह मैं खुश कर दूँ ताकि एक तो मेरा गिल्ट भी खत्म कर दो, आई फील गुड, एंड दूसरा आप भी कंप्लेन ना करें. सो वो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गया फिर. और इसको करने से हुआ क्या कि मैं बच्चे का फायदा करने की बजाय
0: नुकसान
1: कर रही हूँ. बट इट ओनली ऑल हैपेंड, हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज जो कर रही हूँ वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रही हूँ. इंटेंशन इज वेरी प्योर, अगेन इंटेंशन इज वेरी राइट, लेकिन क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करके किया जा रहा है उसका रिजल्ट, तो वो क्या हो रहा है,
0: Somewhere we need to check our own emotions and why we are doing it.
1: Absolutely. तो अब जैसे आपके लिए कुछ करने की बात आई, सपोज अब मुझे ये लगे कि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है, आई कैन क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, मुझे आपको खुश करना नहीं है खुश रहने के लिए खुद, तो दिस विल नॉट मेक मी इनडिफरेंट, दिस विल मेक मी वेरी स्ट्रॉन्ग पहले. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब यहाँ एनर्जी अच्छी होगी, मेरे अंदर डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, तो मेरे अंदर क्या, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस. लव कुछ करने में नहीं होता है, लव होता है फर्स्ट आई फील लव. एंड इफ आई एम फीलिंग लव, क्या मैं आपको अच्छी तरह से खाना बना के नहीं खिलाऊंगी जब आप आओगे? ये तो बहुत छोटी चीज है, ये करना तो बहुत इजी है किसी के लिए भी. कोई आ रहा है, आप 10 चीजें बना दो खाने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट की है? तो जब अंदर राइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो आउटर एक्शन है क्या वो कभी भी गलत हो सकता है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल.
0: तो इट मीन्स जब मैं इंडिफरेंट भी होती हूँ तो तब भी अंदर कोई हर्ट है.
1: हर्ट ही है ना, ऑफकोर्स हर्ट है.
0: मतलब ये कि अगर मुझे ये फील करना है कि मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो फिर मैं कम्प्लीटली यू नो
1: मैं इनडिफरेंट एक्चुअली बनती नहीं. जैसे मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी क्या है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो या तो मैं आपको बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करती हूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा हर्ट, आप मेरे से खुश नहीं हुए, तो मैं एकदम से रिएक्ट करके या तो विड्रॉ हो जाती हूँ. बोथ केसेस इट इज़ एन एक्सट्रीम केस. अगर मैं स्टेबल हूँ कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे खुश रहना है, अगर मैं खुश रहूँगी मेरी वाइब्रेशन राइट होगी, मेरी वाइब्रेशन अपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मुख से गलत वर्ड निकल नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे वचन, मेरे वर्ड्स का, मेरे एक्शंस का जो बीज है वो है यहाँ. अब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना.
0: अच्छा,
1: है
0: एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ. ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ, सपोज मेरा ही मूड ऑफ, ठीक है, और मैं, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में, मुझे पता है आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इट्स नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशंस जो हैं वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली, इवन इफ
1: एब्सोल्युटली. लेकिन वाइब्रेशंस तो हमारा, सी वाइब्रेशंस हमारे यहाँ बॉक्स है, इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी क्रिएट, एंड दैट्स व्हाई वी सेड पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक स्टेप पर जो एनर्जी क्रिएट की, लेट्स से सुबह मॉर्निंग में एक डिस्टर्बेंस घर में हुई, वो जो एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो सिर्फ घर तक नहीं रहती है, वो घर से फिर मेरे काम पर जाती ही है, और फिर एक बार वो थॉट का साइकिल ऐसा वाला शुरू हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस वाला, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब यू नो, वो क्वालिटी की थॉट जो क्रिएट हो गई तो फीलिंग कैसी क्रिएट हो गई? इट इज ऑब्वियसली ऑफ डिस्टर्बेंस. तो दिस नाउ विल कैरी फॉरवर्ड मी विद मी टू वर्क. अब ऑफिस में भी फिर मेरा आज सारा दिन थोड़ा सा वैसे वाला बीतेगा, फिर व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क टू होम I will again carry forward that energy. फिर उसी तरह व्यवहार, तो ये तो carry forward तो हर जगह ही हो रहा है.
0: फिर मेरा relationship आपके साथ, जब मैं घर आई या जो भी मेरे husband है या wife है उनके साथ, तो मेरा relationship में मुझे पर से कोई problem नहीं थी. Dependent, I was not looking for happiness or like you know, but I myself was disturbed with somebody else, something else.
1: एक बार stability क्या है वो एक्सपीरियंस किया, तो वो स्टेबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है. एक बार हमने स्टेबल रहना सीख लिया, वो स्टेबिलिटी मीन्स कि हम डिपेंडेंट नहीं हैं. जब वो आपने सीख लिया, तो वो फिर आप चाहे मेरे साथ हैं, इधर हैं, उधर हैं, किसी के भी साथ हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब डिपेंडेंट थी, तो इस पर भी डिपेंडेंट है, इधर भी डिपेंडेंट है, उधर भी
0: डिपेंडेंट है. So it means it'll be with all, or it'll be with none.
1: Absolutely. You know? That is the crux. Either you will be happy, you will be always happy, and if you are disturbed, you're going to be more or less disturbed. Yes, ये हो सकता है कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह से बात की, तो मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी है. और वो डिपेंडेंसी फिर क्या क्रिएट करेगी, हमेशा वही एफर्ट कि ये मेरे साथ ठीक रहे, वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से नाराज है, कम से कम ये तो मेरे साथ ठीक रहे. इन द प्रोसेस आई विल सेंड यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. तो हम जो एफर्ट हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर स्टेबल होंगे तो यू मुझे इनडिफरेंट कर देगा, नहीं. हम समझते कि स्टेबिलिटी मीन्स इनसेंसिटिव, लेकिन स्टेबिलिटी विल मेक मी ऑल द मोर सेंसिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, हैप्पीनेस, लव और पीस, ये नेचुरल फ्लो करेगी. इसको जबरदस्ती क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी नेचुरल होगी जो फ्लो करेगी. एंड ये वो चीज़ है जो सबसे पहले सामने पहुँचती है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये वो सामने नहीं पहुँचेगी. एंड वंडरफुल बात ये होती कि इफ़ आई रियली क्रिएट लव for you, even if I say something जो थोड़ा सा harsh है, suppose मैं कह दूँ मुझे नहीं लगता कि जो आज आपने पहना है वो इतना अच्छा नहीं है, but I'm very clear कि intention क्या है, what do I feel for the opposite person, तो आपको वो बात hurt नहीं करेगी, क्योंकि वो hurt की energy के साथ गई नहीं है. क्यों नहीं गई है, क्योंकि यहाँ hurt नहीं है. लेकिन हम क्यों hurt बहुत जल्दी experience करते हैं, क्योंकि जो हमें बोलने वाला है
0: वो दे उस intention से रहा,
1: intention से शायद नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके पास energy वो वाली है ना. तो अगर मेरे अंदर वो energy insecurity की है कि मेरे कुछ बोलने से इनको पता नहीं बुरा ना लगे, या अब वो इनसिक्योरिटी के साथ मैं बहुत ध्यान से भी कोशिश करूँ ना बोलने की आपको कि शायद जो आपने पहना, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर जाएगा. क्यों करेगा, क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी की, वो पेन की नेगेटिव एनर्जी. सो व्हेन यू आर स्टेबल आपको पुट ऑन नहीं करना पड़ता, आपको इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा कैसे बोलूं, इनको बुरा तो नहीं लगेगा. कितनी सोच सारा दिन ये चलती है कि जो मैं बोल दूंगी ये बुरा तो नहीं लगेगा. क्यों बुरा लगेगा, बुरा लग नहीं सकता इफ इट हैज गॉन विद द राइट वाइब्रेशन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्क इज द ऑपोजिट पर्सन एनीवेज. लेकिन हम नेचुरल रहते हैं, इसको कहते हैं अपनी नेचर. नेचर मतलब वो जो हमारा स्वरूप है, शांति का, खुशी का, उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करती है,
0: सहज होते जाएंगे,
1: एंड कर्म तो फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा. अच्छा, बट इट विल गो विद द राइट एनर्जी,
0: यू नो. सो अगेन चेकिंग इज ऑन यू नो कि आप कितने नेचुरल हैं,
1: और वो नेचुरल तब होते जाएंगे जब डिपेंडेंट नहीं है. तो एक एक अपनी डिपेंडेंसी को चेक करें, ये भी एक बहुत सटल चेकिंग है, क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने लोगों पर और कितनी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं. आपने पहले कहा था फ्रीडम, जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ फ्रीडम
0: नहीं है, बिल्कुल नहीं है. यस,
1: देयर इज, इट कैन नॉट बी टुगेदर. फ्रीडम और डिपेंडेंसी कट्ठे नहीं हो सकती. अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ तो देन हाउ एम आई फ्री. फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के अफेक्ट से आई

0: नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और है. तो अगेन दैट इज वाई द इनसिक्योरिटी.
1: दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? द राइट एनर्जी. तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है करना है, लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे, वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूँ, स्टेबल हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल.
0: नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूं मैं, अपनी बात कहने का जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की आपने बात की, वो हिम्मत नहीं रख पाता, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं.
1: पर जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तब आप बिना रूड हुए या बिना हर्ट हुए भी अपनी बात सामने वाले को कह सकते. आज मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है, अंदर बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पाने के कारण अंदर ही अंदर रखा, कर रहे हैं, खुश नहीं है, क्यों बोल नहीं पा रहे हैं. तो कम्युनिकेशन इज रियली नॉट देयर एक्चुअली. क्यों? बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ. एंड व्हाई डू आई नॉट हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ? बिकॉज आई एम स्केर्ड कि जैसे ही अगर मैंने कहा तो आपका डिसअप्रूवल तो नहीं मुझे मिलेगा, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे. ये इनसिक्योरिटी मुझे अंदर ही अंदर घुटती जाती है. एंड देन हाउ कैन आई एवर बी हैप्पी विद सो मच ऑफ डिसकम्फर्ट? दैट्स व्हाई वी रियलाइज कि ये सारा डिसकम्फर्ट, ये सारा अपहीवल, ये सारी इनसिक्योरिटी, ये बाहर किसी की वजह से नहीं है.
0: I have created it. And in fact, अगर आपने कहा कि बात भी तभी करो, even if you know that once you're stable inside, अगर हम इसी अनस्टेबिलिटी में, इसी जो भी हर्ट एंगर जो भी है उसमें जाके बात करेंगे,
1: इट वोंट वर्क अगेन. तब इट विल नॉट वर्क, क्योंकि सपोज मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे कहनी है, लेकिन वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को स्टेबल रख के फिर कहनी है. लेकिन अगर वो इस भाव से कही जा रही है कि मुझे कंप्लेंट करना है आपके अगेंस्ट, या मुझे आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर फील कराना, या मुझे आपको क्रिटिसाइज करना है, तो कितने भी अच्छी तरह से उस बात को रख दो, इट जस्ट वॉन्ट वर्क. वो एनर्जी तो साथ में जाने ही वाली है. वी नॉट एबल टू सी दैट एनर्जी इज फ्लोइंग विद द वर्ड्स. हमें लगता है सिर्फ वर्ड्स ट्रांसमिट होते हैं.
0: तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कहा.
1: फिर हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था, पता नहीं क्यों नाराज हो गया, पता नहीं उनको क्यों वो बात बुरी लग गई है. वो जिस एंगल से देख रहे हैं दैट इज ओके, देयर जर्नी. बट अगर मेरी कोई कही हुई बात या कुछ कहा सामने वाले को पहुंची है, एंड द पर्सन हैज क्रिएटेड हर्ट, कहीं ना कहीं आई हैव टू चेक माय एनर्जी. मैं उनको नहीं चेक कर सकती, उनको नहीं चेंज कर सकती, अपने आप को तो चेक कर सकती हूँ. तो जो मैं वर्ड्स भेजती हूँ सामने, जो मैं एक्शन सामने करती हूँ, इट ऑल्सो गोज विद अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू से. एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कौन पहुँचता है.
0: एनर्जी पहुंचे,
1: एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ड्स भेज रहे हैं. पहले ही सोच लिया पता नहीं कैसे दिख रहे हैं आज, क्या पहना हुआ है. वो फिर से बोला हाँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज देखने में. व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? हम देन आई विल से मैंने तो बहुत अच्छी तरह से बात की है उनसे, पता नहीं उनको ही पता नहीं मेरी बात पसंद क्यों नहीं आई. एंड फिर हम कहते हैं मैं आपको नहीं समझ पाते. आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू. आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस. कि मैं सोचती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हूँ. बीच में कन्वर्टर लगाया हुआ है. सोचो कुछ और, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ट्रांसमिट करो, और ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाले ने तो सिर्फ यही रिसीव किया, और जो मैंने बोला वो तो बहुत अच्छा था, तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए. फिर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने उनसे अच्छी तरह से बात की फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा. देन द फोकस अगेन गोज आउटसाइड. जस्ट हैव टू चेक दिस.
0: यस, यू नो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी लर्न टुडे, इज कि हमें जरूर चेक करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसे रिएक्ट क्यों कर. हम सिर्फ उनका रिएक्शन देखते हैं. वेरी ट्रू. और जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो अगर वो हैप्पी है तो ऑफकोर्स मतलब कोई अपना है, तो हमारे किसी बोल से अगर कोई नाराज हुआ है या कोई दुख में है, तो वी रियली नीड टू चेक कि हमने क्या किया था,
1: कौन सी एनर्जी भेजी थी साथ में.
0: यू नो समवेयर वी हैव टू सी, पेरेंट चाइल्ड में भी आ जाता है, हर रिलेशनशिप में इट कैन कम डेफिनेटली. तो आज जो बात हमारे सामने आई कि डिपेंडेंसी, मेरी अपनी हैप्पीनेस जो थी वो इसलिए बार बार ऊपर नीचे होती थी कि मैं अपने ही रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट था. और दूसरी बात ये कि जब मैंने अपनों को भी परेशान होते देखा मेरी ही बात से, वो भी कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट तो करती ही है.
1: That's why. And जैसे ही वो अफेक्ट करती है फिर आई सेंड द नेगेटिव. सपोज मैं अभी थोड़ा सा

0: टेबल हूँ, मैंने नहीं आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी, लेकिन आप हर्ट हो गए और आप रिएक्ट कर गए, वो रिएक्शन का मुझ पर प्रभाव तुरंत पड़ा क्योंकि डिपेंडेंसी है. फिर मैंने इमीडिएटली आपको कौन सी एनर्जी भेजी, फिर वो एक्सचेंज ऑफ
1: वो शुरू हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस है. तो इनफैक्ट इट्स सो फास्ट कि हमें रियलाइज भी नहीं होता. तो इट कैन ओनली हैपन विद अवेयरनेस. वी रियली नीड टू चेक. कोई मन में सवाल उठता है तो या तो आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. जैसे शिवानी, हर बार हम ये कहते हैं कि जो भी हम समझ रहे हैं वो अभी तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठकर उस पर विचार करते हैं या उसको सोचते हैं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठता जाता है.
0: जब साइलेंस में बैठते हैं हम अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और अगर रोज सुबह जब प्रोग्राम देख रहे हैं सभी, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि इसको सुनना नहीं है सिर्फ, यू नो, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो जस्ट डोंट लिसन टू इट जैसे आपने सारा प्रोग्राम सुना, लेकिन अपने अंदर अपनी थॉट्स के साथ, अगर आपको ये थॉट्स ठीक लगी, द वे ऑफ थिंकिंग, तो उसको अपनी थिंकिंग के साथ रिलेट करना है, तब फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना. It will become simpler. Don't have to do too much effort with that. तो जैसे जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं साथ साथ उसको भी करते जाएं, और फिर रोज सवेरे उठकर कुछ मिनट्स अपने साथ बैठकर इसको फिर कर सकते हैं.
1: तो क्या हम अभी कुछ लम्हे जो है करें एक्सपीरियंस?
0: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने आप को देखे. आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढी, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब जगह ढूंढते ही रहे इंतजार में कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे. आई नाउ अंडरस्टैंड आई एम अ हैप्पी बींग. खुशी मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना स्वभाव है. हैप्पीनेस इज व्हाट आई एम, हैप्पीनेस इज व्हाट आई क्रिएट. मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूं. एज आई गो आउट टुडे एंड टुमारो टू वर्क, लेट मी जस्ट टेक दिस थॉट विद मी. I am a happy being, going to work and meeting people. And jaise hi is thought ke saath jaate ki I am already happy, to khushi fir mangne ki nahi, lekin auron ko dene ki, auron ke saath share karne ki shakti ban jaate. Tomorrow, instead of looking for happiness, let's give happiness. Om Shanti.
1: Om Shanti. In fact, ये equation हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं. हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है. और आज इस thought के साथ कि मैं खुश हूँ, I'm a happy being, खुशी मेरी अपनी creation है, I can start giving. बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ और अभी करनी है, खुशी के कुछ और आस्पेक्ट समझने हैं, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं. ओम शांति.

वो पीटी टीचर मैदान में बच्चों को सिखा सकते हैं. दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ऑन द अदर हैंड, ओलंपिक्स 36 के लिए जो आपकी तैयारी हो रही है उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत सारी शुभेच्छा. माई बेस्ट विशेस टू यू, टू योर होल

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, दुनिया में हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार और मित्र। लेकिन सांसारिक रिश्तों का एक दस्तूर है, वे तब तक बने रहते हैं जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। जैसे ही कोई मतभेद होता है या स्वार्थ के आड़े कोई बात आती है, रिश्तों का वह रंग फीका पड़ने लगता है। लोग बदल जाते हैं, वफादारी बदल जाती है और दिल पर लगा वह पुराना रंग उतर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मित्र के बारे में सुना है जिससे एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुसीबत उस रिश्ते के रंग को फीका नहीं कर सकती? कबीर साहब आज हमें एक ऐसे ही अनूठे और शाश्वत दोस्त से मिलवाने आए हैं जिसका रंग कभी उतरता ही नहीं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम रहस्यमय सूत्र। एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे तो भी रंग न जाई। एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, एक जु दोस्त हम किया

श्रोताओं, कबीर साहब अपनी अंतरात्मा के आनंद को प्रकट करते हुए कहते हैं, एक जू दोस्त हम किया, मैंने इस संसार के झूठे प्रपंचों को छोड़कर उस एक अविनाशी परमात्मा को अपना दोस्त यानी अपना सच्चा मित्र बना लिया है। जिस गली लाल कबाई, और वह मित्र ऐसा है जिसके गले में हमेशा लाल कबाई यानी प्रेम और आनंद का सुंदर सुंदर लाल चोगा रहता है। वह खुद भी इसी प्रेम के रंग में सराबोर है, और जो उसके पास जाता है उसे भी इस रंग में रंग देता है। जब उस परमात्मा का रंग आत्मा पर चढ़ता है तो क्या होता है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, सब जग धोबी धोई, सब जग धोबी धोई मरे। यह जो पूरा संसार है एक धोबी की तरह है, जो लगातार ताने मार कर समाज की रूढ़ियों और निंदा के पत्थरों पर पटक कर मेरी इस भक्ति के रंग को धोने की, मिटाने की कोशिश करके थक गया है। तो भी रंग न जाए, लेकिन उस सच्चे मालिक के प्रेम का रंग इतना पक्का है कि यह संसार रूपी धोबी कितनी ही कोशिश कर ले, मेरे आत्मा से वह लाल रंग कभी उतर ही नहीं सकता, वह स्थायी हो चुका है। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह दोहा सूफी मत के इश्क ए हकीकी और वेदांत के अनन्य अनुराग का अद्भुत संगम है। अध्यात्म में लाल रंग को महा आनंद, सुमिरन और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जब साधक की चेतना उस निराकार राम तत्व से एक हो जाती है तो उसके भीतर एक भीतरी रूपांतरण घटित होता है। संसार का स्वभाव है कि वह जागते हुए साधक की परीक्षा लेता है, उसकी निंदा करता है, उसे भटकाने की कोशिश करता है। यही सब जग धोबी का अर्थ है। कबीर समझा रहे हैं कि जो भक्ति कच्ची करता है वह सामाजिक दबाव में टूट जाता है, लेकिन जहाँ संपूर्ण समर्पण है वहाँ आत्मा पर प्रभु प्रेम का ऐसा मजिठिया अर्थात पक्का रंग चढ़ जाता है जिसे काल भी नहीं मिटा सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से पूछिए कि हमारे जीवन का रंग इतना कच्चा क्यों है? क्यों किसी की छोटी सी कड़वी बात हमें उदास कर देती है? क्यों परिस्थितियों के बदलते ही हमारी भीतरी शांति गायब हो जाती है? क्योंकि हमने अपने रिश्ते और अपनी दोस्ती इस नश्वर संसार से लगा रखी हैं। आज कोशिश कीजिए उस लाल कबाई वाले सच्चे मित्र से हाथ मिलाने की। अपने भीतर उस राम नाम के पक्के रंग को घोलिए जो आपकी आत्मा को आनंद से सराबोर कर दें। जब भीतर वह सच्चा प्रेम जाग जाएगा तो बाहर का कोई भी धोबी, कोई भी निंदा या दुख आपको छू भी नहीं पाएगा, और आप परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए मस्त मलंग होकर जी सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटर

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं, क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हो, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए, मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं, हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए। मतलब हर चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है बेसिकली, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरी वन एल्स ऑल्सो, बिकॉज इट वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए हमारे पास लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है, सो वाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच।
1: Like you said, I can do so much for happiness. You don't have to do anything for happiness. You have to be happy. See, doing or being, ये दो चीजें हैं। एक है being, मतलब who I am, that being inside. And doing is what I'm doing outside. तो एक है being happy and एक है doing something for getting happiness. तो एक है मैं हूँ खुश और दूसरा है मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया। सिंपल चीज, जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे, यू नो, हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें, ये होगा
0: तो मैं खुश
1: तो खुश होंगी, यू नो। एक स्टूडेंट लाइफ से भी, इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट, या हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, स्कूलिंग खत्म हो जाएगी,
0: आई विल बी अर्निंग ना, व्हेन आई विल बी इंडिपेंडेंट, या मैं जब कॉलेज जाऊंगी ना तब आई विल नो।
1: सो वाइल दो स्कूल ईयर्स मैं ये कहती रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, विच मीन्स कि अभी
0: I'm unhappy.
1: Yeah. अभी I'm not happy, but ये होगा तो then I will be happy. तो फिर चलो schooling खत्म हुई, फिर हमारी education खत्म हुई, फिर हम profession में आ गए, फिर हमने सोचा when I get a partner ना, when I get into a relationship, and फिर वो then I will be happy. फिर वो search started for that. फिर वो रिश्ता हुआ, then I say हमारे जब family हो जाएगी ना, then I will be happy. तो every time वो happiness पोस्टपोन ही होती रही कि कब ये होगा।
0: और आई थिंक जब एक स्टेज आती है कि जब नहीं हो रहा होता और लगता है कि आगे तो और कुछ नहीं हो पाना, तो फिर तब पीछे देखना शुरू करते हैं, देन सेट कि वी लॉस्ट ऑन एवरीथिंग,
1: तब हम कहेंगे वो वाले जो दिन थे ना
0: वो अच्छे थे।
1: सो हियर आई एम इन द प्रेजेंट, लेकिन वेयर एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया। अगर मैं यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ कि जो हो गया दैट वॉज वेरी नाइस, दैट वॉज वेन आई वॉज हैप्पी, बट दैट टाइम आई डेंट फील दैट। क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वॉज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी। तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आने वाले पल में। इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, आई डोंट थिंक, बट इट इज लाइक दैट। एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स, आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें, वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज पर होती है। तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट, कुछ होगा तब खुशी मिलेगी, लोग कुछ करेंगे
2: never,
1: तो खुशी मिलेगी।
2: I mean
1: तो हैप्पीनेस वाज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन इन द प्रोसेस, मेरा एक एक पल बीतता गया, हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अगले पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा। कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज पर डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड, लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट है. एक सेकंड अगर हम सोचें इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज़ किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा, हाउ विल आई फील, कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी. जैसे
0: I'll be very fearful.
1: Exactly. That's the point. This is the crux. जिसको ये समझ में आ गया उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती.
0: Fear and happiness can't be.
1: Fear and happiness cannot be together. डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं. तो जैसे ही मेरी खुशी, क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीज़ों पर, लोगों पर, तो जितनी भी चीज़ों पर वो डिपेंडेंट है मैं हर चीज़ के लिए डर में रहूँगी. लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा डर में रहूँगी कि ये ठीक है, ये मेरे से नाराज तो नहीं हुए, ये खुश है ना, ये संतुष्ट है ना, मैं इनके लिए. फियर इनसिक्योरिटी, जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ इनसिक्योरिटी है. अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है सारा दिन क्या है, और इकट्ठे कर जाओ. फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए, कहीं अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं, तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा.
0: खुश है कि मेरा बॉस खुश है.
1: सी इट्स ऑलवेज फियर. तो जहाँ फियर है वहाँ स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे. इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज वेस्ट. द ओनली रीज़न कि इतना कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी की इक्वेशन अपने लाइफ में सेट कर दी है. इन चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं और डिपेंडेंसी मीन्स फियर. डिपेंडेंसी कैन नेवर बी स्टेबिलिटी. डिपेंडेंसी मीन्स फियर. जैसे जैसे आप एक एक चीज़ से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हटाते जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ हटा कर देखो. सपोज मैं एक दिन के लिए अपने आप को कहूँ मेरी खुशी इन पर डिपेंडेंट नहीं है, नाउ व्हेन आई कम इनटू इंटरेक्शन विद यू हाउ विल आई बी,
0: यू विल बी अ स्ट्रांग पर्सन, यू विल नॉट बी अफ्रेड एक्चुअली कि मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है.
1: एंड देन व्हाट विल दैट मेक मी,
0: यू विल बी स्टेबल, यू विल
1: बी वेरी नेचुरल, आई विल नॉट बी,
0: यू विल नॉट बी आर्टिफिशियल. यस, यू नो,
1: सी बिकॉज मेरी खुशी आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आई कैन जस्ट बी नेचुरल, I can be the way I am. मुझे आपको खुश करना नहीं है,
0: मुझे डर नहीं. To be dependent.
1: We hate to be dependent, but actually हम सारा दिन dependent ही हैं. परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, किन किन चीज़ों पर अपने आप को डिपेंडेंट करके रखा है. इतनी चीज़ों पर डिपेंडेंट होंगे तो खुशी, तो फिर वो जीवन सारा डर में बीतता है. क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब ये नॉर्मल है किसी के साथ भी. अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि माय फिजिकल हेल्थ शुड बी ओके, तो हमेशा क्या बना रहे
0: कि मेरी ये कुछ होना चाहिए इसको. शिवानी, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी उस पर अगर मुझे दिख रही थी, बट वॉज इट ओनली डिपेंडेंसी और माई केयर वॉज नेचुरल. क्या मैं उसके प्रति, अगर मैं ऐसे हो जाऊँ कि फिर मुझे अपने आप को एक रहना है, तो मैं फिर उनके लिए जो मैं करती आ रही हूँ किसी के लिए भी वो मैं नहीं करूँगी.
1: एग्जैक्टली. अब लेट्स लुक एट इट लाइक दिस. एक है जो मैं बाहर करती हूँ और एक है जो मैं करते हुए अंदर फील करती हूँ, जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. तो अब मैं बाहर आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, आप आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आपके लिए सब कुछ, मैं सब कुछ कर रही हूँ बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ. अगर मैं डर में हूँ तो कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही. अगर मैं इनसिक्योर हूँ कि मेरी हर छोटी बात पर यू नो आपको ये लगे, तो वो करते हुए आपको सब कुछ मैं कर दूंगी अच्छे तरह से, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होने वाली है. वॉट इज द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी पर आज हमारे फंडामेंटल जो रिलेशनशिप्स इतनी मेहनत करते हुए भी क्यों उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने होने चाहिए. हम बाहर से शायद पहले से कई गुना ज़्यादा आज कर रहे हैं. यू नो इवन इफ यू लुक एट पेरेंट्स एंड चाइल्ड, आई फील कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो इतना कुछ नहीं होता था, मतलब आराम से ही बड़े हो रहे थे, आ रहे हैं घर खाने. आज तो पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन करते हुए जो एनर्जी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो इनसे क्योंकि आज हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये बहुत डीप है. मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उतना समय नहीं दे पाते. लेट्स से अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनको अंदर यू नो एक गिल्ट है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते. जब मैं गिल्ट में घर आती हूँ तो मैं और ज्यादा ओवर करती हूँ कि मैं क्या करूँ ताकि यू नो मैं आपको खुश कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे, अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आपकी गलतियों के लिए यू नो इन अ पेरेंट चाइल्ड मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं जितनी देर आपसे मिली हूँ ना आपकी हर बात मान लूँ, आपको जो चाहिए वो आपको दे दूँ, आपको किसी तरह मैं खुश कर दूँ ताकि एक तो मेरा गिल्ट भी खत्म कर दो, आई फील गुड, एंड दूसरा आप भी कंप्लेन ना करें. सो वो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गया फिर. और इसको करने से हुआ क्या कि मैं बच्चे का फायदा करने के बजाय
0: नुकसान कर रही
1: हूँ, बट इट ओनली ऑल हैपेंड, हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज़ जो कर रही हूँ वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रही हूँ. इंटेंशन इज़ वेरी प्योर, अगेन इंटेंशन इज़ वेरी राइट, लेकिन क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करके किया जा रहा है उसका रिजल्ट, तो वो क्या हो रहा है,
0: समवेयर वी नीड टू चेक आवर ओन इमोशंस कि व्हाई वी आर डूइंग.
1: एब्सोल्युटली. तो अब जैसे आपके लिए कुछ करने की बात आई, सपोज अब मुझे ये लगे कि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है, आई कैन क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, मुझे आपको खुश करना नहीं है खुश रहने के लिए खुद, तो दिस विल नॉट मेक मी इनडिफरेंट, दिस विल मेक मी वेरी स्ट्रॉन्ग पहले. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब यहाँ एनर्जी अच्छी होगी, मेरे अंदर डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, तो मेरे अंदर क्या, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस. लव कुछ करने में नहीं होता है, लव होता है फर्स्ट आई फील लव, एंड इफ आई एम फीलिंग लव, क्या मैं आपको अच्छी तरह से खाना बना के नहीं खिलाऊंगी जब आप आओगे. ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये करना तो बहुत इजी है किसी के लिए भी, कोई आ रहा है आप 10 चीज़ें बना दो खाने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट की. तो जब अंदर राइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो आउटर एक्शन है क्या वो कभी भी गलत हो सकता है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल.
0: तो इट मीन्स जब मैं इंडिफरेंट भी होती हूँ तो तब भी अंदर कोई हर्ट है.
1: हर्ट ही है ना, ऑफ कोर्स हर्ट है.
0: मतलब ये कि अगर मुझे ये फील करना है कि मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो फिर मैं कम्प्लीटली
1: मैं इनडिफरेंट एक्चुअली बनती नहीं. जैसे ही मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी क्या है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो या तो मैं आपको बहुत ज़्यादा प्लीज करने की कोशिश करती हूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा हर्ट, आप मेरे से खुश नहीं हुए, तो मैं एकदम से रिएक्ट करके या तो विथड्रॉ हो जाती हूँ. बोथ केसेस इट इज़ एन एक्सट्रीम केस. अगर मैं स्टेबल हूँ कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे खुश रहना है, अगर मैं खुश रहूँगी मेरी वाइब्रेशन राइट होगी, मेरी वाइब्रेशन आप पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मुख से गलत वर्ड निकल नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे वचन, मेरे वर्ड्स का, मेरे एक्शंस का जो बीज है वो है यहाँ. अब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना है.
0: एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ, ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं है, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ है, सपोज मेरा ही मूड ऑफ है, ठीक है, और है, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में, मुझे पता है आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इज नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशन जो है वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली इवन इफ.
1: Absolutely. लेकिन vibrations तो हमारा, see, vibrations हमारे यहाँ box है. It's like a box that we create. And that's why we said पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक step पर जो energy create की, let's say सुबह morning में एक disturbance घर में हुई, वो जो energy of disturbance create की वो सिर्फ घर तक नहीं रहती है, वो घर से फिर मेरे काम पर जाती ही है, और फिर एक बार वो thought का cycle ऐसा वाला शुरू हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस वाला, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब यू नो वो क्वालिटी की थॉट जो क्रिएट हो गई, तो फीलिंग कैसी क्रिएट हो गई, इट इज़ ऑब्वियसली ऑफ डिस्टर्बेंस. तो दिस नाउ विल कैरी फॉरवर्ड मी विद मी टू वर्क. अब ऑफिस में भी फिर मेरा आज सारा दिन थोड़ा सा वैसे वाला बीतेगा, फिर व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क टू होम आई विल अगेन कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी, फिर उसी तरह ये तो कैरी फॉरवर्ड तो हर जगह ही हो रहा है.
0: फिर मेरा रिलेशनशिप आपके साथ, जब मैं घर आई हूँ, जो भी मेरे हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ तो मेरा रिलेशनशिप में मुझे पर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिपेंडेंट, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस और लाइक यू नो, बट आई myself was disturbed with some
1: chair. Stability kya hai wo experience kiya तो वो स्टेबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है. एक बार हमने स्टेबल रहना सीख लिया, वो स्टेबिलिटी मीन्स कि हम डिपेंडेंट नहीं हैं. जब वो आपने सीख लिया, तो वो फिर आप चाहे मेरे साथ हैं, इधर हैं, उधर हैं, किसी के भी साथ हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब डिपेंडेंट थे, तो इस पर भी डिपेंडेंट है, इधर भी डिपेंडेंट है, उधर भी
0: डिपेंडेंट
1: है. दैट इज द इधर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी, एंड इफ यू आर डिस्टर्ब, यू आर गोइंग टू बी मोर और लेस डिस्टर्ब. यस, ये हो सकता है कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह से बात की, तो मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी है. और वो डिपेंडेंसी फिर क्या क्रिएट करेगी, हमेशा वही एफर्ट कि ये मेरे साथ ठीक रहे, वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से नाराज है, कम से कम ये तो मेरे साथ ठीक रहे. इन द प्रोसेस आई विल सेंड यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. तो हम जो एफर्ट हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर स्टेबल होंगे तो ये मुझे इनडिफरेंट कर देगा, नहीं. हम समझते कि स्टेबिलिटी मीन्स इनसेंसिटिव, लेकिन स्टेबिलिटी विल मेक मी ऑल द मोर सेंसिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, हैप्पीनेस, लव और पीस, ये नेचुरल फ्लो करेगी. इसको ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी नेचुरल होगी जो फ्लो करेगी. एंड ये वो चीज़ है जो सबसे पहले सामने पहुँचती है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये वो सामने नहीं पहुँचेगी. एंड वंडरफुल बात ये होती कि इफ़ आई रियली क्रिएट लव फॉर यू, इवन इफ आई से समथिंग जो थोड़ा सा हार्श है, सपोज मैं कह दूँ मुझे नहीं लगता कि जो आज आपने पहना है वो इतना अच्छा नहीं है, बट आई एम वेरी क्लियर कि इंटेंशन क्या है, व्हाट डू आई फील फॉर द ऑपोजिट पर्सन, तो आपको वो बात हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो हर्ट की एनर्जी के साथ गई नहीं. क्यों नहीं गई है, क्योंकि यहाँ हर्ट नहीं. लेकिन हम क्यों हर्ट बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो हमें बोलने वाला है
0: वो देस इंटेंशन से रहा,
1: इंटेंशन से शायद नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके पास एनर्जी वो पड़ी है. तो अगर मेरे अंदर वो एनर्जी इनसिक्योरिटी की है कि मेरे कुछ बोलने से इनको पता नहीं बुरा ना लगे, अब वो इनसिक्योरिटी के साथ मैं बहुत ध्यान से भी कोशिश करूँ ना बोलने की आपको, कि शायद जो आपने पहना, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर जाएगा. क्यों करेगा, क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी की वो पेन की नेचर है. सो व्हेन यू आर स्टेबल, आपको पुट ऑन नहीं करना पड़ता, आपको इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा, कैसे बोलो इनको बुरा तो नहीं लगेगा. कितनी सोच सारा दिन ये चलती है कि जो मैं बोल दूंगी ये बुरा तो नहीं लगेगा. क्यों बुरा लगेगा, बुरा लग नहीं सकता इफ इट हैज गॉन विद द राइट वाइब्रेशन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्क इज द ऑपोजिट पर्सन एनीवेज. लेकिन हम नेचुरल रहते हैं, इसको कहते हैं अपनी नेचर. नेचर मतलब वो जो हमारा स्वरूप है, शांति का, खुशी का, उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करती
0: है, सहज होते जाएंगे.
1: एंड कर्म तो फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा. अच्छा, बट इट विल गो विद द राइट एनर्जी,
0: यू नो. सो अगेन चेकिंग इज ऑन यू नो कि आप कितने नेचुरल हैं,
1: और वो नेचुरल तब होते जाएंगे जब डिपेंडेंट नहीं. तो एक एक अपनी डिपेंडेंसी को चेक करें, ये भी एक बहुत सटल चेकिंग है, क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने लोगों पर और कितनी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं. आपने पहले कहा था फ्रीडम, जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ फ्रीडम
0: नहीं है, बिल्कुल नहीं.
1: देयर इज, इट कैन नॉट बी टुगेदर. फ्रीडम और डिपेंडेंसी इकट्ठे नहीं हो सकती. अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ तो देन हाउ एम आई फ्री. फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के अफेक्ट से आई शुड बी फ्री.
0: होता ये है कि बहुत सी चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं. आप मेरे बॉस सपोज, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है मैं क्यों देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा काम, मेरा पूरा दिन भर आपके साथ रहना है, मेरी बहुत सी चीज़ें और बाकी जुड़ी हुई होती हैं. आप मेरे हस्बैंड, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरी, मेरा अगर नहीं हुआ, अगर ये रिलेशनशिप नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और. तो अगेन दैट इज़ व्हाई से क्यों.
1: दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए, तो राइट एनर्जी. तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है करना है, लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूँ, स्टेबल हूँ और जो मैं कर रहा हूँ बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल.
0: नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूँ मैं, अपनी बात कहने का जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की आपने बात की, वो हिम्मत नहीं रख पाता क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं.
1: पर जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब आप बिना रूड हुए या बिना हर्ट हुए भी अपनी बात सामने वाले को कह सकते. आज मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या है, अंदर बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पाने के कारण अंदर ही अंदर रखा कर रहे हैं, खुश नहीं है, क्यों बोल नहीं पा रहे हैं. तो कम्युनिकेशन इज रियली नॉट देयर एक्चुअली. क्यों? बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ. एंड व्हाई डू आई नॉट हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ? बिकॉज आई एम स्केर्ड कि जैसे ही अगर मैंने कहा तो आपका डिसअप्रूवल तो नहीं मुझे मिलेगा, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे. ये इनसिक्योरिटी मुझे अंदर ही अंदर घुटती जाती है. एंड देन हाउ कैन आई एवर बी हैप्पी विथ सो मच ऑफ डिसकम्फर्ट? दैट्स वाई वी रियलाइज कि ये सारा डिसकम्फर्ट, ये सारा अपहीवल, ये सारी इनसिक्योरिटी, ये बाहर किसी की वजह से नहीं है.
0: आई हैव क्रिएटेड इट. आपने कहा कि बात भी तभी करो इवन इफ यू नो दैट वंस यू आर स्टेबल इनसाइड. अगर हम इसी अनस्टेबिलिटी में, इसी जो भी हर्ट एंगर जो भी है उसमें जाके बात करेंगे,
1: इट वोंट वर्क अगेन. तब इट विल नॉट वर्क क्योंकि सपोज मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे कहनी है, लेकिन वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को स्टेबल रख के फिर कहनी है. लेकिन अगर वो इस भाव से कही जा रही है कि मुझे कंप्लेंट करना है आपके अगेंस्ट, या मुझे आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर फील कराना, या मुझे आपको क्रिटिसाइज करना, तो कितने भी अच्छे तरह से उस बात को रख दो, इट जस्ट वॉन्ट वर्क. वो एनर्जी तो साथ में जाने ही वाली है. बी नॉट एबल टू सी दैट एनर्जी इज फ्लोइंग विद द वर्ड्स. हमें लगता है सिर्फ वर्ड्स ट्रांसमिट होते हैं.
0: तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कहा.
1: फिर हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था, पता नहीं क्यों नाराज हो गए, पता नहीं उनको क्यों वो बात बुरी लग गई है. वो जिस एंगल से देख रहे हैं दैट इज ओके, देयर जर्नी. बट अगर मेरी कोई कही हुई बात या कुछ कहा सामने वाले को पहुंची है एंड द पर्सन हैज क्रिएटेड हर्ट, कहीं ना कहीं आई हैव टू चेक माय एनर्जी. मैं उनको नहीं चेक कर सकती, उनको नहीं चेंज कर सकती, अपने आप को तो चेक कर सकती हूँ. तो जो मैं वर्ड्स भेजती हूँ सामने, जो मैं एक्शन सामने करती हूँ, इट ऑल्सो गोज विद अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू सी. एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कौन पहुँचता है. एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ड्स भेज रहे हैं, पहले ही सोच लिया पता नहीं कैसे दिख रहे हैं आज, क्या पहना हुआ है. वो फिर से बोला हाँ अब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज देखने में. व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? देन आई विल से मैंने तो बहुत अच्छी तरह से बात की है उनसे, पता नहीं उनको ही पता नहीं मेरी बात पसंद क्यों नहीं आई. एंड फिर हम कहते हैं मैं आपको नहीं समझ पाती, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस. कि मैं सोचती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हूँ, बीच में कन्वर्टर लगाया हुआ है, सोचो कुछ और, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ट्रांसमिट करो, और ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाले ने तो सिर्फ यही रिसीव किया और जो मैंने बोला वो तो बहुत अच्छा था, तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए. फिर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने उनसे अच्छी तरह से बात की फिर भी उनको अच्छा
0: बिहेव नहीं किया.
1: देन द फोकस अगेन गोज आउटसाइड. वन जस्ट हैव टू चेक दिस.
0: यस, दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी लर्न टुडे. इसकी हमें जरूर चेक करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसे रिएक्ट क्यों कर, हम सिर्फ उनका रिएक्शन देखते हैं. वेरी ट्रू. और जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो अगर वो हैप्पी है तो ऑफ कोर्स मतलब कोई अपना है, तो हमारे किसी बोल से अगर कोई नाराज हुआ है या कोई दुख में है तो वी रियली नीड टू चेक कि हमने क्या किया था,
1: कौन सी एनर्जी भेजी थी साथ में.
0: समवेयर वी हैव टू सी, ये पेरेंट चाइल्ड में भी आ जाता है, हर रिलेशनशिप में इट कैन कम डेफिनेटली. तो आज जो बात हमारे सामने आई कि डिपेंडेंसी, मेरी अपनी हैप्पीनेस जो थी वो इसलिए बार बार ऊपर नीचे होती थी कि मैं अपने ही रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट था. और दूसरी बात ये कि जब मैंने अपनों को भी परेशान होते देखा मेरी ही बात से, वो भी कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट तो करती ही है।
1: That's why, and जैसे ही वो अफेक्ट करती है फिर आई सेंड द नेगेटिव। सपोज मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल हूँ, मैंने नहीं आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी, लेकिन आप हर्ट हो गए और आप रिएक्ट कर गए, वो रिएक्शन का मुझ पर प्रभाव तुरंत पड़ा क्योंकि डिपेंडेंसी है। फिर मैंने इमिजिएटली आपको कौन सी एनर्जी भेजी, फिर वो एक्सचेंज ऑफ
0: पूरा प्रोसेस है। इनफैक्ट इट्स सो फास्ट कि हमें रियलाइज भी नहीं होता। तो इट कैन ओनली हैपन विद अवेयरनेस। वी रियली नीड टू चेक। कोई मन में सवाल होता है तो या तो आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। जैसे शिवानी, हर बार हम ये कहते हैं कि जो भी हम समझ रहे हैं वो अभी तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठकर उस पर विचार करते हैं या उसको सोचते हैं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठता जाता है।
1: जब साइलेंस में बैठते हैं हम अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और अगर रोज़ सुबह जब प्रोग्राम देख रहे हैं सभी, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि इसको सुनना नहीं है सिर्फ, यू नो, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जस्ट डोंट लिसन टू इट, जैसे आपने सारा प्रोग्राम सुना, लेकिन अपने अंदर अपनी थॉट्स के साथ, अगर आपको ये थॉट्स ठीक लगी, द वे ऑफ थिंकिंग, तो उसको अपनी थिंकिंग के साथ रिलेट करना है, तब फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, इट विल बिकम सिंपलर, डोंट हैव टू डू टू मच एफर्ट विद दैट। तो जैसे जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं साथ साथ उसको भी करते जाएं, और फिर रोज सवेरे उठकर कुछ मिनट्स अपने साथ बैठकर इसको फर कर सकते हैं।
0: तो क्या हम अभी

आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढी, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब

खुशी मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना स्वभाव है। हैप्पीनेस इज व्हाट आई एम, हैप्पीनेस इज व्हाट आई क्रिएट। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूँ। एज आई गो आउट टुडे एंड टुमारो टू वर्क,

0: के साथ शेयर करने की शक्ति बन जाती है। टुमॉरो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर हैप्पीनेस लेट्स गिव हैप्पीनेस। ओम शांति।
1: ओम शांति। इनफैक्ट ये इक्वेशन हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। और आज इस थॉट के साथ कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी बीइंग, खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है, आई कैन स्टार्ट गिविंग। बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ और अभी करनी है, खुशी के कुछ और आस्पेक्ट समझने हैं, लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं।